0: सोमवार है,
1: है, है।
0: आज सोमवार है,
1: है।
0: तुमको मुझसे प्यार है।
1: Radio
2: 786. Hear the difference.

कमजोर मत होने देना, हमें याद दिलाते रहना कि हमारा रिस्क किसी इंसान के हाथ में नहीं, आपके खजाने में है।

दूसरों की दौलत देखकर अपने नसीब से शिकायत ना करने देना, हमारे दिल को ये समझ अता फरमा कि रिस्क सिर्फ पैसा नहीं होता।

हमारे हक में बेहतर नहीं तो उसके पीछे भागने से बचा लेना, हमारे दिल को अपने फैसले पर राजी कर देना, और अगर हमारी कोई दुआ अभी पूरी नहीं हुई तो हमें मायूस मत होने देना।

0: बेशक हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अल्लाह के बंदे होने और अल्लाह के बंदे बनने में बहुत फ़र्क है और ये वो फ़र्क है जिसका फ़र्क बंदे को पड़ता है, अल्लाह को नहीं। ऐ अल्लाह, तू रहीम है, तू गफूर है, तू रहमान है। हम तेरे बंदे गुनाहों के दलदल में लदे हुए हैं। हम सरतपा ऐबो सर से लेकर पैरों तक गुनाहों से ढके हैं, मगर तू सत्तार अय्यूब है, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमसे राजी हो जा। अगला कलाम, या अल्लाह जब हमारी आंखें बंद हो।
1: या अल्लाह जब हमारी आंखें बंद हो और दुनिया की आवाजें हमसे दूर हो जाएं, उस वक्त हमारे दिल में सिर्फ आपका नाम जिंदा रखना। जब आखिरी सांस करीब हो तो जुबान पर कलिमा रखना और दिल में

अगर किसी का अपना तुझसे दूर हो गया है तो उसे अपनी तरफ वापस बुला ले, अगर वो गलत रास्ते पर है तो उसे हिदायत दे, अगर वो गुनाहों में फंसा है

बेशक एक नज़र मुझ पे भी सुल्तान मदीने वाले, दोनों आलम के निगहबान मदीने वाले, वजाए तकसीन है आका तेरे नाम नामी, दो जहाँ की है तू ही जान मदीने वाले, मुझ पे भी नज़र करम दे मेरे दाता, तेरा होकर हूँ परेशान मदीने वाले, देख लूँ मैं भी मदीना एक दिन, बस यही है मेरा अरमान मदीने वाले। मेरी प्यारी दोस्त जो प्रोग्राम सुन रही है, उनका नाम है शायदा, जो कह रही है थरली इंजॉइंग योर प्रोग्राम एंड अप्रिशिएटिंग द वंडरफुल सिलेक्शंस। अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश करती हूँ, बस दुआ करें मेरे लिए। और मेरी प्यारी बहन रशीदा धन से भी प्रोग्राम पसंद कर रही, कहती है शी इज रियली इंजॉइंग द प्रोग्राम। और फातिमा अपा कह रही है अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह इंजॉइंग द प्रोग्राम, टू मेनी अल्लाह सुबहान ग्रांड सबर इन द हार्ट्स ऑफ द डिजीज फैमिलीज एंड शिफा टू आर सिक, ग्रांड यू ऑल अ सेफ जर्नी होम, आमीन। जजाकल्ला खैर आपकी दुआओं का, आपके हौसला अफजाई का। और अगला कलाम हमने लिया है सरकार की बातें, और ये कलाम हम प्ले कर रहे हैं सदाकत अली साहब की आवाज़ में, सदाकत साबरी साहब जो केप टाउन में आएंगे 20 दिसंबर को परफॉर्म करेंगे, और ये बदौलत होगी इरशाद साहब की। और वो सलाम और दुआ भेज रहे हैं और कह रहे हैं मुबारक फॉर द मंथ ऑफ गौसुल आज़म। तो ये अगला कलाम सरकार की बातें सदाकत साबरी का आवाज़ में।

तो ये थे शब्बीर सदाकत साहब, शब्बीर सदाकत साबरी साहब, जो नैस प्रमोशन की तरफ से इतवार 20 दिसंबर को लाइव आप देखेंगे जोसेफ स्टोन ऑडिटोरियम में, तो ज़रूर आप इनको सपोर्ट करें। अगला कलाम हमने लिया है, सुना है कि बगदाद, मौलाना साली की आवाज़ में।

बेशक धूप मिले तो घमंड ना करना. और हम देख रहे हैं आजकल जो जनाजे हो रहे हैं, बहुत ही जवान लोग 30-35 साल के दरमियान, जैसे हमारी प्यारी हसीना चिलवान जिनका जनाजा बहुत ही गमगीन था क्योंकि वो जवान थी और उसकी छोटी छोटी बेटियां हैं 6 साल की और 2.5 साल की. अल्लाह, मैं कहती हूँ इनके फैमिली को सब्र दे और इनके बच्चों को बहुत सब्र दे. और मेरी ये इत्तिजा है आप लोगों से कि अपने परिवार, अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ मिलजुल के रहे, जो भी गिले शिकवे हैं उन्हें मिटा दें क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं. और देखिए हमारे पहले बुज़ुर्ग कैसे रहा करते थे 50 साल पहले. तो ये अगला कलाम 50 साल पहले.

रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। एक बार तो खुद मौत भी घबरा गई होगी, यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई। डरता हूं कहीं खुश्क न हो जाए समंदर, राख अपनी कभी आप बहाता नहीं कोई। साकी से गिला था तुम्हें, साकी से गिला था तुम्हें, मैं खाने से शिकवा, अब जहर से भी प्यास बुझाता नहीं कोई। रहने को सर...

सरकार ने रुख से पर्दा हटाना शुरू कर दिया। दूसरा शेर जो दे रहा हूं बतवज्जो होकर, उम्मीद करता हूं तमाम इंद्रमारी में जितने भी लोग यहां मौजूद हैं, इस इलाके में बड़े हसीन कलाम सुने जाते हैं, बड़े से बड़े फनकारों को सुना गया है। मैं एक अदना सा अपने आप को फनकार भी नहीं कह सकता, बुजुर्गों के दर का गुलाम हूं। दूसरा शेर जो दे रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि शेर दिलों में बैठेगा। अमीन भाई और तमाम लोग जितने स्टेज वहां सामने बैठे हैं, सभी के नाम से मैं वाकिफ नहीं, तवज्जो इधर जितने खड़े हैं उनसे भी तवज्जो चाहूंगा। ऐसा लगता है कि मेरे सरकार ने रुख से पर्दा हटाना शुरू कर दिया। अब शेर सुने, गारे शोर का वाकया। हमारे आका सैयदना सिद्दीक अकबर के साथ गारे शोर में मौजूद है। बूझहल अपने साथियों के साथ ढूंढ रहा है मोहम्मद कहाँ है। अब मोहम्मद मिले तो मिले कैसे, हिफाजत खुद अल्लाह कर रहा है। और हिफाजत अल्लाह किस तरह कर रहा है अपने महबूब की मुलाजा फरमाएं। कैसे पूछे हैं

आ गई एक मकड़ी मचलते हुए और जाला बनाना शुरू कर दिया। तवज्जो जाऊंगा हजरत सामने जो बैठे हैं, खाली तवज्जो से सुन लेंगे तो समझूंगा कि मेरा प्रोग्राम सक्सेस हो गया। शेर दिल में बैठ गया था। अब शान इस शेर में बयां हो रही है नबी पाक की पाक बेटी सैयदाए कायनात फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। शान देखिएगा, जबकि मकसूद कायनात है, इख्तियार कुल तमाम हाथ में है, मगर फिर भी चक्की चला रही है। इस सादगी पे कुर्बान जाए, आज भी चक्की चल रही है, क्योंकि ये चक्की सैयदा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। अब चक्की चल रही है और फातिमतुज़्ज़हरा याद मौला में खो गई है। मुलाज़ा फरमाइए।

बहुत शुक्रगुजार हूं। तवज्जो चाहूंगा जनाब, जितने सामने बैठे सुन लें, चक्की जल रही है।